0: पत्र मोपरम तालु कालातान कमर्सियल बबकन खरदाई अकाउंट माकाउ स्कैम लव स्कैम जनाया इडागांग बिजनेस ईमेल कॉम्प्रोमिस बीईसी मंपारुंगरा नंबर टीएससी इरा अंडो मागाबाव आयो पीटीडब्ल्यू स्कीम पलाबोरान अंडो मंपारुंग आलोंग रुइत पलासु मातावांग क्रिप्टो अंपंगुबाहान वांग हराम अमुन रिनोंग कावरु स्कैमर राकेतिरो टेलीफोन नेमिन पुसात रेस्पोंस स्कैम कबांगसान रा नंबर सियाम-सियाम तुलु कापामरा सीसीआईडी इन्फो लाइन रा नंबर उमांग सातालु 2-1-2-2-2 कापाम इलेमिन दा semakmur.rmp.gov.my कापामरा फेसबुक रस्मी
1: NJS JKPDRM at Cybercrime Alert RMP
0: पाइताकाव कारूंग रा स्कैमर